0: माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हो दोनों.
1: इट्स अ विग. बिल्ली को जाने दो.

ये सनता बराबर सले तनी तन हाजी दी बहने ननी में फड्डी में हंड कोलो हाय लले यानी ही उंड मराय यंग ये यानी ही या सिदी हा फरक के बरसले यानी हन हाजी दी ए फुले ले यानी हन हाजी दी फड्डी में यानी यानी ही उम्मत लाय सवका उम्मत तड़ में यानी ही या गड़ो हो राय लाले ए के ए उरिदी यंग उलिदी की रखा किया ना का दुले उंड मरा का दिगरा यानी हन आदया ee hayla la yando kono ilaali sahin yani amrat ya selil amrat armi ya banena inta tanimihi neki tikiyal wagi teniki ee kaadu titaheli ya amoy iba fanaha titahel ta tan ummatayin gigi takke tanihiya ee sayu khulabi illa fadi inta tani tanala aada barabar sale tani tan helulu alhu gaabo sinenan ummata ke ee ninni fanala barabar sale tani tan haajidi armi ya dayo sinenan.